0: जो पैसे।
1: क्या कर रही है तार पी आ गया बावलट।
2: कौन?
1: पता नहीं तारुपी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
2: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल, चल, चल।